मै रहोस्, मेरो देश खासी रहोस्, मर्न परे मै मरौं, मेरो देश बाँची रहोस्, मेरो देश बाँची रहोस्।

आता था, हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: यहाँ बैठा शेर की पपिया ले रहा है, जाके खेत में बापू के साथ हाथ नहीं बटा सकता।
1: टाइम चेक, इट्स 3 PM।
2: अहिले दिउँसोको 3 बजेको छ।

0: मिन्मामिन न कोन तर कोन से बोते थान की बानी आर बेकी दिगी की दिगी ती जासी में नगी ती मिब्रो यदि बुरबनी इंगेम बंगबई सिको ती जासी में नगी ब्रो तिनी यर ब्रो रंगे कोन बारा दिबी इंगेम येसी मुबे इंदिगी दा
1: रंगे जी तो दया भाई तो रंगे मंगेम पुरा नहीं नहीं था शेप नहीं है

0: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो भर्मेश्वर टुटप ताबा कादेदा तयार लवन मुसुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 65 रंग निदा स्वागत मुला नियोग तामाङ रंग गति मध्ये तिगाइसे हाल सालै नदा रंगला विश्वासनीयता मुक्तिला कथा कदे जुसुगमुला रंग करे नच्छा लानन अध्यारो परिस्थिति कदेला सामाना लसुबा मुबा जहाँ बेनन ताम निराशजनक म्रामुला प्रत्येक अवस्थाले परमेश्वर से आवश्यक आश्चर्य कर्म कदे लसुजे जुन से लामा रंग रंगला परिस्थिति फेरि दासुजे रंग कदी मध्ये हालै दत्ते निराशला दुईला सामना लसु मुला रंग कदे दत्ते दोना एन परमेश्वरला यासे रंगला लुइरी फन्न गई थेन्दे रंग कदे जुन निराशाजनक अवस्थिरी मुस्युला थेग्या मुक्त तागै बिसी ब्रान्जीव मुला भजन संग्रह 34:18 चूर्ण तिङ तब गदे बेनला ङम परमप्रभु मुस्युला देन निराशा तब गदेदा रोसे बचाव लसुमुला रंगदी मध्ये जो दत्ते संघर्ष लसुबमुला परमेश्वरजे रंग देदा बेनन प्रार्थना देन न्यानबन मुसुला परमेश्वरजे रंग देदा खासुला अरे परमेश्वरजे रंगला नाम मुसुला थेन्दे परमेश्वरला योजना रंग देदा रंगला निराशाजनक अवस्था ग्याम छुटकारा तिनसुबा हिन्बा रोमी 5:3-5 चुदे जे आहिन दुखरी नोन याङ ताङबा मुला तिग्द विषम याङसे दुख नाजी विषम अझन याङ विश्वासरी पाको मि दोला दुख नखाम्बा शक्तिसे याङदा पाको मि सोला याङ पाको मि तमाहेन्से याङदा आस खमुला याङसे लामा चु आससे याङदा दुख नोनबा आल तिग्द विषम याङदा परमेश्वरसे रङला आत्मा पिनबा मुला ओछे थेनोन आत्मासे याङला सेम्री परमेश्वरला माया थानबरी पिनबा मुला परमेश्वरला बारेरी याकर्गी साचिन अचम्मला देन अद्भुत ताम चुहिन्बा कि परमेश्वर याङला समस्या देग्याम मुक्त लाभ जेखेन हमला आरे तसै भविष्यरी याङदा लानन प्रभावकारी सेवाला लागि तयार लरिबा लबरी याङसे भोक्तिबा थे संघर्ष कदे देन प्रयोग लबरी हम्बा मुस्युला एफिसी 2:10 तिग्द विषम याङसे जब गे लगाइ बिसे परमेश्वर से याङदा यीशु ख्रिस्ट यम छार मि शोभा हिन्दा थेसे नङबा अनसार ब्रगै बिसिन परमेश्वर से याङदा नक्षा हेन्सेन शोभा मुबा तयारी हाइमा दमन रमाइलो आतामुला यद्यपि रङसे भोग्दिबा पीडा ग्याम परमेश्वर दा लिच्छा रङदा छुटकारा पिन्स्युला हेन्दे तिरम थे छुटकारा लिच्छा रंग भविष्य थेनोन प्रकारला कठिनाइदा पार लबरी रंगला क्षमतरी लानन बाङमा तसुला चुला अतिरिक्त रंगसे भोक्तिबा रंगमन कठिनाई कदे अनुभव लजिबा सन्दोदा रो लबरी रंग लानन सुसजित तसुला सायद रंगसे स्वास्थ्य समस्या कदे देन संघर्ष लसुबा मुला देन परमेश्वरसे चमत्कार पुराण रूपरी रंगदा फान्न लसुजी दारेम रंग देन स्यान्दोदा फान्ना लावा विश्वास मुला सायद रंगसे आर्थिक संघर्ष क्याम गुजरब तबा मुबा जब रंगसे परमेश्वरसे रंगदा चुग्याम छुटकार पिन्छुबा अनुभव लसुला रंग टाङ्गला आवश्यकता सन्दर्भरी परमेश्वरदा माइबका देदा समृद्ध शोभरी प्रोत्साहित लाभरी हमला याकुब 1:2-4 नाला जो जो आले आँगा गदे एनी गदे थोरी थरी थरीला आपत विपत खामा चु ताम दोबा ताम हिन्ना बिसी मनगो तिग्दा विषम चुरङबा दुख नामा हेन्से एनी गदेला विश्वास यम अझ एनी गदे से ग्रेन ग्रेन दुख नखामला विपत ताम एनी गदे दा खानोन मुला थेत बासेलमा एनी गदे थोरी खबा जम्मन दुख पुराण नागो चुरङ लसी विषम एनी गदे जत्तोन दुख तसै नोन नखाम्बा पाको मितोला जब याङ लुइरी कठिनाई कदेला सामना लामुला चुसे परमेश्वर फिरला याङला विश्वासला परीक्षा किनमुला निराशाला चु दुइरी याङ रो फेरि भरोसाला बरे लोपन निभा याङ परमेश्वर से याङदा खेरङमा मेरी गप्पा अनुमति पिनला जो सन्दोदा लानन्देन तरिकासी रो लावरी हमला तामुला कठिनाई कदे ग्याम याङसी अनुभव लावरी हमला आनन्द ओत्ते बेला याङसी भोक्दिबा पीडाला कारण से आइनबा तसै चु भविष्यरी परमेश्वर से याङना लागि थानमा छुटकाराला प्रतिक्रियारी याङला भरोसा खान्सी हाला आमेन। रङ्गिला जीवनले परमेश्वर से लानन लानन आशिष पिन्छु गई आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यान्छुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939। धन्यवाद। हस् त त्यो समय रिङ्गा बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
0: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।